आवाज़ी ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ी ताजिक 4 बजे दुशंबे नगर और साढ़े 4 बजे भारतीय समय के अनुसार एक घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियां आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी

आप हमारे वार्ता कार्यक्रम से जुड़े हैं। इस कार्यक्रम में हम दीन के महत्वपूर्ण मुद्दों, संस्कृति, समाज और रोजमर्रा की जिंदगी पर रोचक विश्लेषण और चर्चा प्रस्तुत करते हैं। हमारे साथ बने रहें। उपयोगी वार्ताएं और ताज़ा खबरें हमेशा हमारे प्रसारण में उपलब्ध है।

0: प्रिय श्रोताओं, आप सभी को नमस्कार। आज के कार्यक्रम में हम रश के नायकों के समान और ऐतिहासिक समृद्धि के पूर्ण जागरण में रश के नेता की भूमिका विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ रहे। ताजिकों के आधुनिक राज्य व्यवस्था के इतिहास में ऐसे महान व्यक्तियों का उदय हुआ है जिन्होंने अपनी जन्मजात बुद्धिमत्ता, दृढ़ इच्छा शक्ति, मातृभूमि के प्रति सच्चे प्रेम और राष्ट्र के प्रति अतुट निष्ठा के बल पर जनता के भाग्य की दिशा बल दी है। ऐसे ऐतिहासिक महापुरुषों में ताजिकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति और राष्ट्र के नेता मामाहिम इमालिरहमोन का नाम स्वर्णिम और उभार अक्षरों में अंकित। ये विशेष व्यक्तित्व केवल राष्ट्रीय शांति और एकता के संस्थापक तथा ताजिक राज्य व्यवस्था के पूर्ण जागरूकता के रूप में ही नहीं है, बल्कि एक अनुभवी राजनेता, दूरदर्शी नेता, राष्ट्र निर्माता, देशभक्त तथा राष्ट्रीय इतिहास और संस्कृति के समानकर्ता के रूप में भी विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। राष्ट्र निर्माण और राज्य निर्माण के क्षेत्र में अपने समाज ऐतिहासिक एवं अविस्मरणीय योगदानों के साथ साथ रश के नेता मामाहिम इमालिरहमोन की वो पहल जिसके अंतर्गत रश के नायकों नुसरतुल्लाह मखसूम, शिरीन शोशोह तैमूर तथा रश के इतिहास की प्रतिष्ठित संस्कृति विभूति निसूर मोहम्मद की समाधियों की पवित्र मिट्टी को मातृभूमि में वापस लाया गया, वास्तव में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घटना के रूप में मूल्यांकित की जाती है। ये देशभक्तिपूर्ण और मानवीय पहल ताजिकिस्तान गणराज्य के राज्य स्वतंत्रता के 20वीं वर्षगांठ के पावन और गौरवशाली राष्ट्रीय उत्सव की पूर्व संध्या पर साकार हुई। ये कदम ऐतिहासिक न्याय के पुरस्थापन तथा राष्ट्र के निष्ठावान सपूतों के सम्मान के प्रतीक के रूप में देश के आधुनिक इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित रहेगा। इसी कारण हमने इस महत्वपूर्ण पहल के महत्व पर ताजिकिस्तान के राष्ट्रीय पुस्तकालय के उपनिदेशक मोहम्मद इकबोल अतुजोदा से बातचीत की। उन्होंने कहा है कि इस प्रकार की पहलें केवल आध्यात्मिक और नैतिक मूल्य ही नहीं रखती, बल्कि राज्य व्यवस्था की नींव को मजबूत करने, राष्ट्रीय आत्म चेतना को विकसित करने तथा इतिहास के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने ये भी कहा कि जो राष्ट्र अपने महान पुत्रों और नायकों का सम्मान करता है, वो एक स्थिर, समृद्ध और उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करने में सक्षम होता है।
1: مسئله با وطن باز آوردنی یا اینکه با وطن برگردانیدنی مشت خاک قهرمانان شهید ملت تاجیک که در
0: شهید تاجیک رشتر نایکون کی میتی کو جنہیں اپنی ماتر بومی سے باہر دکھا دے روپ سے ہتیا کر دی گئی تھی، واپس وطن لانا یا ان کے اوشیشوں کو سویدیش لوٹانا تاجیک رش کے لیے ایک اتیان ایتہاسک اور اتیان مولیوان گھٹنا ہے۔ ویگیانک विश्लेषण के दृष्टिकोण से मेरे व्यक्तिगत विचार और विश्लेषण के अनुसार इस मुद्दे की चार विशेषताएं हैं। पहली, ये राष्ट्रीय पहचान से जुड़ी है। दूसरी, राजनीतिक और भूराजनीतिक महत्व रखती है। तीसरी, ऐतिहासिक न्याय से संबंधित है। और चौथी, ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और समूची मानवता के लिए एक स्पष्ट संदेश है। यदि हम पहले पहलू अर्थात पहचान निर्माण की बात करें तो हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति ने इस पहल के माध्यम से युवाओं को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। उनका संदेश ये था कि जहां कहीं भी ताजिकों की मिट्टी और उनके अवशेष है, ताजिक राष्ट्र उन्हें अपना मानता है और उनकी जिम्मेदारी उठाता है। दूसरा, जिसने भी ताजिक राष्ट्र की सेवा की है, चाहे वो किसी भी समय, स्थान, परिस्थिति या राजनीतिक दौर में रहा हो, उचित अवसर आने पर उसका सम्मान और मूल्यांकन

0: ਸੇਵ ਰਾਜ ਤਾਜਿਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੀ ਪੰਜਵੀਂ ਕੋਰਸ ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥਿਨੀ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੋ ਤਾਜਿਕਿਸਤਾਨ ਆਈ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਂ ਤਾਜਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਨੇ ਲਗੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਤਾਜਿਕ ਗਾਨੇ ਵੀ ਉਸਕੋ ਅੱਛੀ ਲਗੀ। ਇਸਸੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੈਂ ਗਿਫਤੀ ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਮਲਾਯਾਲਮ ਮੈਂ ਗਾਨੇ ਗਾਤੀ ਥੀ। ਉਸਕੀ ਅੱਛੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਕੇ ਸ਼ਿਕਸ਼ਿਕਾ ਨੇ ਗਿਫਤੀ ਕੋ ਤਾਜਿਕ ਗਾਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਆ। ताजिक गाने गाना गिफ्टी को अच्छा लगा। वो कहती हर कार्यक्रमों में जो यूनिवर्सिटी और उसके बाहर आयोजित होता है वो भाग लेती है। गिफ्टी ने इस गाने के बारे में ये बात कही।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं गिफ्टी सिवराज एहान ताजिकिस्तान में अविसिना मेडिकल इंस्टीट्यूट में 5 कोर्स में पढ़ती हूँ। यहाँ इन 5 सालों में मुझे हर साल ताजिक गाना का मौका मिला है और इसके लिए मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत महसूस करती हूँ। और इन सबका श्रेय जाता मेरी आवाज़ क्लास में सुनकर मुझे गाना का अवसर देने वाली मेरी ताजिक मैम श्रीमती सुहरा मैम। उन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी से परिचय करवाया और यूनिवर्सिटी से मैं यहाँ के भिन्न भिन्न गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में भी भाग लेने का अवसर मिला। इनमें कुछ प्रोग्राम्स थे, नवरोज़ प्रोग्राम, यूथ डे, वुमेंस डे प्रोग्राम। इन प्रोग्राम्स में मैंने कई गाने गाए। उस मेन एक है गाना आला। यह एक प्रातः ललबी है जो एक माँ की ममता को दर्शाता। माँ ये अपने बच्चे को सुनाने से पहले अपनी मधुर आवाज़ में अपने बच्चे के कानों में गूंजती है। ये गाना एक माँ का उसके बच्चे के तरफ स्नेह को प्रकट करता। इस दुनिया में माँ के ज़्यादा उसके बच्चे को कोई और प्यार नहीं कर सकता। उसका स्नेह अमूल्य है। ये गाना दर्शा को भी बहुत पसंद आया। ये गाना मुझे यूनिवर्सिटी ने सुझाव दिया। शुरू शुरू में कुछ कुछ वाक्य पढ़ने और जाने में मुश्किल थे, लेकिन प्रैक्टिस के बाद गाना आसान निकला। जो ताजिक गाने में गए वे जारे अर्थपूर्व है और यह गाने भी मज़ेदार है। नए एक राज्य में मेरे को अपनी कला को दर्शने मौका मिला, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और यह उम्मीद करती हूँ कि आगे भी मुझे अवसर मिलते हैं।
0: आपको याद दिलाया कि कई साल पहले हमने अपने प्रोग्राम में गिफ्टी को आमंत्रित की थी और उन्होंने ताजिकिस्तान पर अपने नए गाने को पेश किया था। आप उस इंटरव्यू का एक पात आपके लिए पेश करते हैं।

0: आवाज़ ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ ताजिक 4 बजे दुशंबे नगर और 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार एक घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियां आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: नमस्ते प्यारे सुनने वालों, रेडियो आवाज ताजी की हिंदी भाग की जारी है और आपका स्वागत है। हमारे प्रसारण में आप सुन सकते हैं स्थायी और विदेशी समाचार, ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जीवन के बारे में दिलचस्प पैनियां, विश्लेषण, विशेषज्ञों से बातचीत। आज की जिम्मेदारियां में इस प्रोग्राम के दीते रामजोर प्रोड्यूसर शेर अली वाली शेर आपका समाचार भाग में स्वागत करते हैं और हम मुख्य खबरों से शुरू करेंगे।

आप हमारे वार्ता कार्यक्रम से जुड़े हैं। इस कार्यक्रम में हम दीन के महत्वपूर्ण मुद्दों, संस्कृति, समाज और रोजमर्रा की जिंदगी पर रोचक विश्लेषण और चर्चा प्रस्तुत करते हैं। हमारे साथ बने रहें। उपयोगी वार्ताएं और ताज़ा खबरें हमेशा हमारे प्रसारण में उपलब्ध है।